0: होता है
1: होता है।
0: Tabenta kuta mbuya tinazonana timidzi pano ku makamaka ku Thandwe ndeka.
1: Takuta takuta, bye bye.
0: Bye bye. Ciao ciao.